भगत सर गुरु पुरख सोई जैसर प्राणा जिस हर प्रभ पाणा पावे आनंद अनद वजे वजे हरि आप गल मिलावे।

सगल सुमगरी तुम रै सूत्र तारी तुम ते हो ऐसो तुमरी गात मित तुम ही जानी नानक दास

जी से जान जुग मह सुखवासी से मुक्त भय जन हर त्याया जी तिन तूटी जमकी फासी जिन निरभाओ जिन हर निरभाओ त्याया जी तिनका भाओ सब गवासी जिन सेव्या मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंतन तेरे भगत साला हन तुद जी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक करहे हर पूजा जी तप तापहे जपहे बेअंता तेरी अनेक पढ़े बस सिमरत साहित जी कर किरिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो पावे मेरे हर भगवंता तू आदि पुरख या परंपर करता जी तुर जीवड अवर न कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नहचल करता सोई तुरे आपे भाव सोई वरता जी तू आपे करह सो होई तुरे आपे श्रेठ सब उपाई जी तुरे आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सब सह का जानोई आसा महला चौथा तू करता सचार मैडा साई जो तो भाव सोई थी सी जो तू दे सोई हो पाई रहाओ सब तेरी तू सब नी त्याया जिसनों कृपा करह तन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मन मुख गवाया तुरे आप बिछोड़िया आप मलाया तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे जी जंद सब तेरा खेल बिजोग मिल बिछड़िया संजोगी मेल जिसनों तू जान आए हे सोई जन जाने हर गुण सद ही आख बखाण जिन हर सेव्या तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया

अड़ल सुनै गुंग जो जाहि सुरस न पावई सुनै मूढ़ चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द भौ निकट ना तिन नर के रह हो जो जाकी एक बार चौपाई को कह चौपाई संबत सत्रह सहस पणिज अर्ध सहस पुन तीन कहिज भाद्रव सुधि अष्टमी रब वारा तीर सतद्रव ग्रंथ सुधारम एत श्री

नमान्यों सिमरत शास्त्र वेद सवैं बहु भेद कहें हम एक न जाने हो श्री सपान कृपा तुमरी कर मैं न कहे ओ सब तोहे बखाने हो दोहरा सगल द्वार को चाड़ कर गहे ओ तुहारो द्वार वाहे गहे के लाज अस गोविंद दास तुहार सगल

अमृत छाड़ भिख भिख खाई, माया मोह भरम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तह मलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो सरनाई। ज्ञान ध्यान किश कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। सो कहो टल गुर सेविया, अहनस सहज सुभाए। दर्शन परसे

सज्जन तू है, सैन तू, मैं तुझे ऊपर बहु मानिया, जा तू अंदर ता सुखे, तूने माणी माणी।

तौ असंख मंजो हब बधणिया हिक पूरी नजर निहार देह दर्श रंग माणिया जै टिठे मन धीरिए सो क्यों विसरे माओ मैं जय टिठे।

दुख लगे न पाई। सतगुरु पूरा भेटिया जिन बनत बनाई, राम नाम औखत दिया एक कालिव लाई। रहा राख लिए दिन रखन हार, सब याद मिटाई।

साकत हर साधना जानिया तिन अंतर होमे कंडाए ज्यो ज्यो चले चुभ दुख पावे जम काल सहसे डंडाए हर जन हर हर नाम सुमाने दुख जन्म मरण पव खंडा है अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहुत

गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु।

अष्टपदी सिमर सिमर सिमर सुख पाव कल कले तन मय मिटाव सिमर जाप संबर एक नाम जप त्या गंत्यानिक वेद प्राण सिमर सुधाखर किन्ने राम नाम एक आखर किन काय जय जीव सावै ताकि मैं मगर न आवै काकी अख द्रस्त आरो नानक संग मोह उदारो सुख मनी सुख

प्रभु के सरण कार्य पूरे प्रभु के सरण कभ न चूरे प्रभु के सरण हर गुण बाने प्रभु के सरण साई समाने प्रभु के सरण नेचले आसन प्रभु के सरण कमल विगासन प्रभु के सरण आना

जय माता सुमित न पाई मनोहर नाम चेरा संग सहाय जय महाप्याम दूत जम दलाय तह केवल नाम संग तेरा चलाय जय मुस्कल हो वे अत पारी हर को नाम किन्माय उदारी अनुपुर जन करत नहीं तरह हर को नाम कोड़पा पर हराय गुरुमुख नाम जपहु मन मेरे नानक पाप सुख नेरे सो सिद्ध को राजा दुखिया हर का नाम जब तो सुखिया।

तपि सरथी वै अग्नमय होमत परान कनकस वह भरपूम दान न्योले कर्म कर बवासन जनमार संयम साधन निमख निमख कर से घटाव तो पिहमय मैल न जावै हर के नाम संसर्ग।

निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया सासंग दुर्मतमल हिरिया सगल उद्यम में उद्यम पला हर का नाम जप हो जी सदा सगल बाणी में अमृत बाणी हर को जा सुन रसन बखानी सगल

मीत बनता संघहसाय जय प्रसाद पीवे शीतल जला सुखदायी पवन पाव कामला जय प्रसाद पोगा सबरसा सकल समग्री संग साथ बसा दीने हस भाव।

मिथ्या सर्व पर निंदा सुने मिथ्या पर दर्व को हिरे मिथ्या नेत्र पेखत पर तरया रूपाद मिथ्या रचना भोजना अनुस्वाद मिथ्या

वाहन जय प्रसाद प्रसाद सुख मंदर तय सदा मन अंदर जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पैर सिमरत सुरसना।

सदा सुख पावे। सासंगत गोचर लह साधु के संग अदर सह साधु संग बसे थान ऊचै साधु के संग महल पहुचै साधु के संग दृढ़ सब धर्म साधु संग केवल पार ब्रह्म साधु संग पाए नाम निदान नानक साधु के कुर्बान साधु संग सब कुल।

साधक संघ को लोकत हरा साग संग नरक पर हरा साग संग यहाँ वहाँ सोहेला सा संग बच्चर तर मेला जो इच्छा सोए पर पावै साग संग न मृथा जावै पार ब्रह्म साध रित बसाय नानक उदर साध सुन रसाय साधक संग सुनो हर नाव सा संग अर के गुण गाओ साग संग न मत बिसराय सा संग सर पर निस्तराय साग

कईकोट देवपुर मंडल कईकोट ससियर सूर्ण खतर कईकोट देव दानविंदर सिर छतर सगल समग्री अपने सुतारे नान जस जस भावे तिस तिस निस्तर कईकोट राज तम सतग कईकोट वेद प्राण सिमरतर शास्त्र कईकोट के रत्न संबंध कईकोट नाना प्रकार जंत कईकोट की अचर जीव कईकोट ग्रीमर स्वरण थीव कई कोट द किन्नर पे साच कई कोट भूत पे शुक्र मृगाच सब ते नेरा सब ते दूर नानका पलव श्रेया परपूर कई कोट पताल के वासे कई कोट नर्क सुरु निवासे कई कोट धन में जी में मरे कई कोट भजो नि फिराय कई कोट बैठ ते खाए कई कोट काले तक पाए।

कैकोट प्रभु को खोजनते आत्मय पार ब्रह्म लहनते कैकोट दर्शन प्रप्यास तिनको मिले प्रविनाश कैकोट मंग सत्संग पार तिन लग रंग जिनको आप सो प्रसन्न नानक तेजन सदा तन तन कई कोट खानी अर खंड कई कोट अकाल ब्रह्मांड कई कोट अवतार कई जगत के न विचार कई बार पसरे पसार।

देवसुदाय प्रकृपते बंधन टूटे गुरु प्रसाद नानक हो छूटे सहस खटे लख कोट तावे त्रिपत नावे माया पाछे पावे निकोग विख्या के करे न त्रिपतावे खप खप मरे बिना संतोख नहीं को राज्य सुभन मनोरथ बिर सब का जय नाम रंग सर्व सुख होय बड़पागी किसे प्राप्त होय करण कराम ने आपे आप सदा सदा नान कर दाप करण कराम करने हर इसके हर कहा विचार जैसे जैसे करे।

संत के दुखन अर्जा कटाए, संत के दुखन जमते नहीं छुटाए, संत के दुखन सुख सब जाए, संत के दुखन नरक में पाए, संत के दुखन मत होए मरीन, संत के दुखन सो बात हीन, संत के दुख रखन कोय, संत के दुखन थान प्रष्ट होय, संत कृपाल कृपा दे करे नान, संसंग निंदक पितर है, संत के दुखन तय मुख पवे, संतन के दुखन काग ज्यों लवाए, संतन के दुखन सर्व जन पाए, संत के दुखन दृ जन किरमाए, संतन के दुखन तृष्णा में जलाए, संत के दुखन सब कौ चलाए, संत के दुखन ले देते सब जाए, संत के दुखन निचन चाहे, संत दुख कथों को नाये नान, सुन पावे तो भी गत पाए, संत के नंदक मात ताए, संत के नंदक खंड कर न पाए, संत

संग दुखी धन में भरा संग दुख न सुख ते डरा संग दुखी को नाही ठाओ नान संत पावे ताले मिलाए संग दुखी अभी टूटे संग दुखी के ते काज ना पहुंचाए संग दुखी को ध्यान पर

जिसको हर ब्रह्मांच आवे सो संसुहला ने डुलावे जिस प्रभु अपना कृपा करे सो सवे को किस तय डराए जैसा सत्य सदस्य अपने कारण आप समाया सो दसो दसो दत्त सीधिया गुरु प्रसाद सब बुझिया जब देखो तब सब कुछ मूल नानक सो सुखम सोय सोल ने कि जन मैं ने कुछ मरे आप चलता आप ही कराए आमन जान दृष्टम दृष्ट आज्ञाकारी धारी सब सिर

जिसके सत्सो करने हार वरना भूत कर विचार करते कि मित्र न जाने के अनान ज्योति पाए स्वर्ती आ विष्णु विष्णु पाए विष्णु आदि बुद्धिया ते साया स्वाद प्रभु के रंग राजन रहे गुर के वचन विदार्थ रहे हो जाते जो काटन हार जा के संग तरह संसार दिन का सेव सोड़ पागे जन के संग अगले लागे जन के

कृपा के पाए सफल दर्शन पे कृपा निध पार सत चरण गत निर्मल रीत पेठ संग्राम कर पार ब्रह्म के दर का कव सुनकर वचन करना खाना मन संतोष।

बोलना पवचत प्राणी अगम अगोचर प्राण निर्वाणी निराह निर्वैर सुखदाई था कि ना पाई अन भगत बंदन नित करा चरण कमल हृदय सिमर है सार बल हरे सदगुरु अपने नानक दस प्रसाद सवरज अपने रस पावे जन कोय अमृत पीवे अमर सोय उस पुर का ना ही कदे बिना उस जा कैमन भक्ता गुंता साठ पार हर का नाम ले सच वे सेवक हो दे मोह माया के संग न लेप मन में रखे हर हर एक अंधकार दीपक प्रकाश नानक परम दुख तय ते न सह तब तुम्हारे ठान वर्ता ये नंद व्यास को नाठे पाए जन्म के

कोय जाकर दब से हर सोए कलता ते दंडर नाम सिमर सिमर सदा सुख पाव पवन से पूर्ण होय आस भगत पाए आत्म प्रकाश तेत कर दब से बनासी को नानक काटे जम पासी तात विचार कह जन सचा जन मरे सुखा

भाई संग न चाले तेरे तना तू कह लपटा मैं मूर्ख मना सुत मित कुटुंब पर मैं बनता सुत मित कुटुंब अर बिन अबनता इनते कहो तुम कवन सनाथा राजरंग माया विचार इनते कहो कवन छुटकार आशा से रथ स्वरी चुठा डम चूट पा सारी जिन दे तजना बिगन नाम सर नानक पहचाना गुर की मत ले आने भगत बिना बडू बे सियाने हर के बल करो मन मेन।

तो हे भक्तजन के मंत्र रंग बिरला को पावे स्वंग एक बार जगह कर्म या गुरु प्रस्थान नाम जप लेता कि उम्मा कहीं न जाए नान क्रिया सर्व समाये प्रभक्षण दीन दयाल भगत वचन सदा कृपा लिया नाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा

अपार अविनाश शिशु का अपना संता जनमन को कहा बिना संध्या पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की द्रास कहो कि सोए जब अभिगत गोत्र प्रवेखा तब चित्र गुरु पूछल लेखा जब ना निरंजन गोत्र का तब कौन छुटे कौन मंदिर मार दे अपना पापे चब धना का प्रूप आप उपदा जय निर्मल पुरुष पुरुष पत होता था अवन मैर को कहतो था जय निरंजन रंका निर्वाण था कौन को मान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जग देता छल छद लगत को कि जय जो स्वरूप जो संग समावत सब

दुख सुख मान अभिमान प्रकार के अवख्यान आपन के लाभ कर देखा खेल संकोच चेतन नानी के क्या जाए भगत आप जय पथरा पसार संत प्रताप दो पा का पे तन उनके स्वभाव नो बनी आप कौत करे आनंद चो जा पे रस पो निर्जोग जिस पावे तसे आप नाय लाभ।

तुम ते बन नहीं कछोए अपन सो सब जगत पर रोए जा को प्रभु आप जाए सच नाम सोई जन पाए सो समर शीतल का बेता नानक सोल सिच का जेता जी जंतर सब ताके हार दीन दयाल नाथ को नाथ जिसरा खेत कोई न मारे सो मोह जिस मन विसारे तेजर का को जाए सब सर एक निरंजन राय जी एक जुग जाके सब

मनंतर विश्वास कर मान्य करना नानक जान्य जन लागार एक कहना है जिसके आसन वृत्ति जाए सेवक को सेवा बनाए हुक्म बोझ परम पद पाए से ऊपर नहीं विचार जा के मन से अंदर अंकार बंधन तौर पर निर्भर अंदर पूजा गुरु के पैरे लोक सुखी पर लोक सुय ले नानक प्रभाव पे मिले सा संग मिल करो नंद गुण गाव पर परमानंद राम नाम तक करो विचार दुर्लभ देखा करो उदार अमृत व्यंजन के गुण गाव प्राण तन कहे सुहाओ आठ पैर पर बिखो नेरा मिटिया ज्ञान में से अंधेरा सोन उपदे सिर दे बसाओ मन छे नानक फल पाओ हल पर दुले स्वार राम नाम अंतर तार पूरे गुर के पूरे लिखिया जिस मन वसे तो साज परिख्या मंदन नाम जपो ले लाए दुख धर्म ते पहुंचाए सच व्यापार करो व्यापार इधर का निभा खेप तुम्हारी काटे गुरु खमर माए नानक बो नया बह जाए तेस्ता जोर कहाँ को दाय बरे राखनार ते निरपोज बैसकल पमिटा प्रभु कृपा ते

असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तप ताव असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सती असंख दातार असंख सूर।

सवारी सकल प्रजाजने आप सुवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सतरन को पल मोह बद कियो घर घर की अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछांत।

जैसी अग्न द्रम है तैसी बाहर माया, मायागन सब इको जे ही करते खेल रचाय, जा तिस पाणा ता जमया, परिवार पहला पाया, लिव छुड़की लगी।

परमित पारावारना पाया रह राशि रह रास है पैरी पै जग पैरी पाया गुरमुख सुख फल अमर पद अमृत बिरख अमृत फल लाया वर्तमान भी विश्वे होए एक ही सहज कर आया सच्चा अमर गुर अमर।

दुख सब विसारना अंगीकार ओह करे तेरा कार्य सब सुवारना सबना गला सम्राट स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिब क्या नाही कर तेरे करता तेरे सब किस है जिस देहे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिन कह मन वसया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरे साचा नाम मेरा आधारो

ब्रह्मा देवी सुहण तेरे सदा सवारे गावे तदरों इंद्र द्रासन बैठे देवत्या तरनाले गावे तदरों सेत समाधि अंदर गावन तदरों साध विचारे गावन तदरों जति सती संतोखी

वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सगल द्वार को छाड़ के गहो तुहारो द्वार, बाहें गह की लाजियास गोबिंदास तुहार। सुनी अरदास स्वामी मेरे सर्ब कला बन आई, प्रगट पई सगले जुग अंतर गुरु नानक की वड्याई। मैं तान दीवान तू है मेरे स्वामी, मैं तद अगे अरदास, मैं होर थाओ ने जिस वे करो बनाती, मेरा दुख सुख जी ही पास। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहबं, गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहबं, गुर प्रसाद जप आद सच जगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहबं, गुर प्रसाद जप आद सच जगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहबं, गुर प्रसाद जप आद सच जगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहबं, गुर प्रसाद जप आद सच जगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहबं, गुर प्रसाद जप आद सच जगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहबं, गुर प्रसाद जप आद सच जगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहबं, गुर प्रसाद जप आद सच जगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहबं, गुर प्रसाद जप आद सच जगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहबं, गुर प्रसाद जप आद सच जगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहबं, गुर प्रसाद जप आद सच जगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहबं, गुर प्रसाद जप आद सच जगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज। सगल द्वार को छाड़ के गयो तुम्हारो द्वार, बाहें गह की लाजियस गोविंदास तुम्हार। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु
Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru,

0: सत्माई होए सहाय
1: सतगुरु आयो शरण
0: तुम्हारी मिले सुख नाम चिंता लाए हमारी आयो शरण तुम्हारी मिले सुख नाम हर सुख चिंता लाए हमारी
1: श्लोक महल्ला पांचवा